Lapche sarv ekumkar satanam kartapur nirbo nirverakalmut ajuni sevang guru prasad jap ad sat shuga such heavy such nanakosi vi such such such na ho ve jesuchi lagvar chupe chup na ho ve jenae raha litar भोग्या भुगना उतरी जय वन पुरिया पर सहस्या न पलक होय दायक न छले नाल किव सच्यारा होये किव कूरे तुते पाल हुकम न जाई छाला हर कर के नाल हुकम हो वन कर हुकम न के आ जाए हुकम हो वंजी हुकम ले वरियाए हुकम हो तम नीच हुकम दुख सुख पाए एक न हुकमे बख्शीश हुकमे सदा बवाए हुकमे अंदर सबको बाहर हुकम न कोय नानक हुकमे जे पूजेता होवे कहे न कोय गावे को तान होवे किसे तान गावे को दचन निशन गावे को गुण वरिया याचार गावे को विख्या विकम विचार गावे को सच तरे तंके गावे को जीले फिर दे गावे को चापे दी से दूर गावे को वह हर हदूर Katina katina ave tot, kat kat kati koti kot kot, deida dele de tat pai, juga jugantar kai kai, hukami hukam chala erao, nanaka veseve parvao, sacha saiv sacha nai, vakya vavapar, ake mange deide, dat kare datar, ferke age rakye, jati se darbar, moke volan bolie, jasundare piar, अमृत वेला सचना वरियाई विचार कर्मी आवे कपरा नदरी मुक्तवर नानक हे वे जानिए सत आपे सचियर तभी

सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु के, जन मरण दुख जाए। होवे सिवतक समधि, नुरासो कर सो जतिये, तुर देते सच पातशाह, मर जन्म जन्म